0: संभाल किधर से आया?
1: पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई?
0: तुम?
1: जी
0: तुम फिर इधर आ गया? बुलाओ पुलिस को।
1: पुलिस को नहीं, पंडित को, काजी को, पादरी को।
0: हा? क्या मतलब?
1: मतलब ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
0: तुम हमसे शादी बनाएगा?
1: बिल्कुल बनाना मानता। लोग अपनी दुल्हन की सेज फूलों से सजाते हैं और हमने नोटों से सजा दी। अब भी यकीन नहीं आता?
0: आमीन। तुम हमको उल्लू तो नहीं बनाता?
1: अगर किसी को दुल्हन बनाना, उल्लू बनाना है तो ऐसा ही समझ लो।
0: यार मस्ती छोड़ो ना, तुम सच सच बताओ हमसे शादी क्यों करना मांगता है?
1: देखो, तू भी चोर, मैं भी चोर, दोनों मिलकर 12 बच्चे पैदा करेंगे।
0: 12?
1: हाँ, चीपर बाय द डजन। कोई गिराकट होगा, कोई चोर होगा, कोई उचक्का होगा, कोई डाकू होगा, और ये सब मिलकर हमको माला माल कर देंगे।
0: सच?
1: हाँ, और जानती है, ऐसे माल पे इनकम टैक्स भी नहीं लगता।
0: आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर पार्टनर, 6 बच्चों से काम नहीं चलेगा?
1: काम तो चलेगा, लेकिन बेचारों को ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए एक डजन ही रहने दो।
0: अच्छा,
1: मंजूर है?
0: डन।

कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद। लेकिन ये झूठ है, मेरी वीरान जिंदगी में एक मुद्दत से फूल नहीं खिले। लक्ष्मी तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई, कहां चली गई? आज 4 बरस से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। दिन बीते, महीने बीते, बरस बीते, मौसम बदलते रहे, लेकिन मेरे दिन नहीं बदले। कहां हो लक्ष्मी, कहां हो तुम कहां हो लक्ष्मी?

0: उदासी नहीं है आज की नारी, वो समानता की अधिकारी। लड़की ही हर वचन निभाए, श्रीमान जी वो युग बीता। राम मगर तुम बन के रहोगे, मैं भी रहूंगी बन के सीता।
1: स्वीकार
0: स्वीकार।